0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: डिजिटल कलरला तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्पिन नगरपालिका 5 सोलु।

सात उनचालीस वर्ष देखि संचालन पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कंपनी नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मशीन पार्ट काठमांडू।

स्वास्थ्य मंत्री सिसिर खनालले श्रीलंका विदेश वैदेशिक रोजगार तथा पर्यटन मंत्री बीजिथा इराथबीज आज भेटवार्ता संयुक्त राष्ट्र संघ को एकासी महासभा में सहभागी होना न्यूयॉर्क में रहकर

0: Radio Network.
1: लोक चांसरी
0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क में तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चांसरी

0: उज्यालो रेडियो नेटवर्क डीएचटीसी एफएम स्टेशन और ऑनलाइन पाठे हनुमान को छपकोन प्रसारण जचमुस विषय चिताई या नेपाबु की प्राविधिक पैसा संघर्ष विस्तार से जी कुमार रंजितिया जजलपा दक्षिण हटना मुख हनुमान भक्का यो सुख कोठला तुकिया लिया नकाबों को चाहती हूँ तुम ही मुसाब दिनसों कुमारी औरत साले को तैयारी बालिंद्र सहाय नेतृत्व सरकार देखो तुम को पता था सुने मुस्लिम से लेते जहाँ तुम था साले उनका कुन हाउ थे स्वर्ग तुम गंभीर भूमि साथ हूँ बच्चे मासूम फेंटिया तुम वास्तव में
1: इतनी पत्ते ऐसे हो रहे हैं सामाजिक संघर्ष में आओगे ना इतनी पत्तों में पड़ सकता मैं खैर भ्रामक सूचना हो सकता इसे मैं आती ना इसे मैं जमने में क्या चल
2: रही है राय को साथ ईश्वर मार दिल्ली कबर और ऑर्डर वन बॉय को तीनों मत एक क्ली बॉय जान में मेरे साथी मैं बने राय को साथ ईश्वर सुनाने जान लाए को नया नया डिजाइन का कपड़ा हर ल्याउनु भएको छ रे छानी छानी किन्ने हो आज
0: बुझाउँ
3: राईको साझा स्टोर्समा तपाईँ पनि आउनुहोस् नयाँ नयाँ डिजाइनका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा छानी छानी लै जानुहोस् यहाँ डाउन ज्याकेट सिलिकन ज्याकेट जुत्ता चप्पल बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई दादो र गर्मी दुवै मौसममा आवश्यक पर्ने फेन्सी कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ प्रोप्राइटर नारद मणि राई मोबाइल नम्बर 9843909809 राईको साझा स्टोर स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै सोलिबुट कुमार नगरपालिका

0: बुलबुल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sound check. Sound FM. The studio time.
2: It's 5 p.m. Start the call 5 minutes.
0: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुधकुंड नगरपालिका 5 सोलु कुंडू

0: 有些好，很多欢喜都在。
1: 为啥子？因为其他口头上的三个字，你听，我们是听你。
2: 可是，你爱的是？哎，你自己不爱说的吗？三百六十五天，我们自己不懂的不知道。你看到咱们吃出来五十次，你是哪天呢？你是不是做那个药生意？
1: 哎呦，你吃多了，本身就有那个罪。
2: 对了，他听了，
1: 他听了。
2: 是吗？你他说什么话呢？我阿弥勒，他还能有白骨骨的肋骨，我回来你骨头。阿弥达摩说什么话呢？我说，咱们咱们，你也不要阿弥拍的，我刷出个垃圾回来呢，搞了说什么？一说说什么呢？什么子？咱们不能吃，肯定不能吃，你打算不能吃，我阿弥刷什么说什么个事？
1: 哦吼，听说来的，一说说什么？心来，我们不能吃，
2: 我们。ब्राह्मण का मिथ्या सूचना शेयर तथा कमेंट के तुम करने दें ना शेयर करने दें तुम तो सूचना सत्य तथ्य हो कि है ना इतनी करने पर सब जिसको स्रोत था पहुंचने पर सब नीति रफ फोटो मिल सके मिल देना राम का समय है ना पर सब आधिकारिक माध्यम हो कि है ना तो तुम था है पायर मात्रे शेयर र कमेंट करने पर सब बुझे
0: भ्रामक सूचना न फैलाऊं जिम्मेवार नागरिक बनाऊं
3: आधिकारिक स्रोत बाटो प्राप्त सूचना लाई मात्र विश्वास करो।

0: Music to your heart. Zulu FM 101.2 MHz.
1: TWR नेपाल नेशनल जो मार्गदर्शन रेडियो ला दस्ती दिले जय मसीह. जी क्यों मोबाइल डाकती सिम के बांग दुप्पी पर लासन निजी के त्यांडो क्लियामो के निदिनी लियामो के निद्राबीन
2: मैसे लुंसा देखे होला कमी दिले तमा गई मची होता हूं आजिन ना दे लुंसा देखे पड़ला कौन जगी सुन लुपिला दिमार गतसन रेडियो ला वानिप सों मैसे आरिन कौन जगी सुन दी चोई कौन जगी क्या मो परी क्रिश्चियन दे नरे निमित घन लागा जिसना तमा साता नुमो पलमो पर जीवी क्रिश्चियन दे तेली की चोई कौन जगी निन्ना मो पर जीवी समझ जगा चोई कौन जगी मो पर सी दू चोई कौन जगी मो पर दे मोती भी तेमा अतंतंगा दिन नोए दिली दुखने चीनी दिन वाले ये न्याजाजना जुन्ना मो चोई कौन जो छोराजी मिंचना चूसी छोरा जलगम दुपुक्षी छोराजी नासन दाजना दोगे जीजमोलिंगा दुपुक्षी न्याना आरिं न्या न्यू जंगी समनंग देखे न्या मतकबा लागते वाला शाह जानंग देखे सुचानी न्या जे न्या खोरे मतकबा ते वाला शाह वादिंग ने न्याना परचला शेर माची साम हमलो मेरकबन उठोल नंग देखे चिरसिंग जलगम मोलाम स्वाहंती मेरीवां छोराजीरां आमें दुचाने दासा बनीलाम भाई बल्लू को पढ़ लगी चोई कौन जगी मो पढ़ दी चीवे तमा मो पढ़ दे कहाँ इंसुल कर लाइन चिले ऐसी की दाग बुलाम मो पढ़ चीवे लाम ये मिंडी इंसी सीन तमा चोई कौन जगी मो पढ़ना क्या ना मो दिवंग बाते चले लाम कुतो कुतो खक्षे तमा तेंगा कहाँ इंसी ने सुलु ब्लागा चीवे मैं जोगन जे दाबी चोई कौन जगी मो पढ़ना चाहे चोई ने जोगन की थोड़ा दाग दे भैया जंजे पर भी की मुलाम सुखाने मो पढ़ तमा तम ने सुलु सुने हाँ कोई की थोड़ा लेम जाने निमा चों बोल चुए घर पे मो पढ़ लाम जिम्मा पर मंग सिनां मन हक बचुए उतना लड़ाई की सेंट चुए जिम्मा पर वो दबने जी तमाम कोई कौन जगे मो पढ़ ची कर लाम घर पे ना समझे घासाई की दगा जनी तम ने चुए घर पे की लाभ सुलो थर्म की ताम का इंसिसिंग ऐसी की दग बलाम कोई की लामा तो ऐसी गंगा शुरू की तम बलाम जिम्मा पर की कर लाम सुन ना सुन ये ये चल की सीधा सुन ये चोई कौन जो युवा में की फरेलो आमते वाला मो पर की लाम ने मुन्नत दोगे युवा से मो पर की लाम ने भिन्न नंगे जी जीतान मुदा चूजी की चीज लगने की वे जीतो को मो पर की जोकता इन नाकुले हो दिए खर्च है मोती की चेप चुप लाम यहाँ जने सीएम लाम जुरुप लाम ग्रीन होए यह दाग भी की मलो चोई कौन जो की मो पर तमा गारी गुरु की नार्थोला छोनी हुए मो पर की कोला थल में की खर्च है ताम खर्च से जुड़ते जीजी जोले में लेनी आने दाग वो कहाँ की हो आसीन सिर्फ ताम भूमि लाम की ताम दो कुतुब में हिंदू खड़ा की रेडियो तमा चुके सिताम देवां मैं जी क्या ताम देवां मैं मैं जरी निनी हो जू जो उन थक गई की चुनाव तवाना लेनी जो को सफला खड़ा की वन तमा कम बिजला निनी तमाम तम बदल तेरी हो जू मैं चुनाव गोल की ताम खड़ा की निनी ना हो जू दिनाना खड़ा की सुरक्षा ताम देवां हो जू तमा खड़ा की बिजला निनी ना हो तमा तेरा की की ताम भाव से चुनी हो तमा जिम्मा पसंद तुकरे इन सुबह बना कौन जाके दाखिल मिला ताम जानने गए कोई की फरार सुनीजन गए भाई बने से दाखिल मिला गोनी दिन बन गए तमा दाखिल की दिलाम सुबह जाने से मिला लेंगे तमा निश्चित नहीं लाम दाखिल ताम ही ताम दाते जीवे तमा भार सुर नींद दीजी चादर बगा जीवे मो पर दिलो जब जी दासाई इन ये सी की लामाम भाव की दासाई था इन तमा जी गोरा बगा जानी ताम नींद सुनाम कुदरान ताम इन तमा दी की चैनल भी सी घोषिन शहर की भयं सुकुप देव जी चैनल भी सी घोषिन देव जी ना सम नाम नंगे है जी भीम नाम चिल्ला रोग छोड़ ब्लाम तमा ये मताम निशो छोड़ा कुदर जो कुब्लाम तमा छोड़ा जी ना सम नाम मुंबा थम जी की ताम निशो कुदर ब्लाम तमाम चेंगे रोग जी थोकलाम जाओ लाखा इन क्रिश्चियन लोग ताम हिचे ही कौन जगी मुलाम जाओ ताम इन तमा दिला मोपरीन जीती जी में जाओ मोआ तमा कौन जगी जुआ कौन जगा चीनी तमाम हिंदी की नासन की मुलाम धर्मी की नीति की मुलाम तम ये चार दफा बोझी हुए तमा दुख जानी ऐसी की दख बलाम सही कौन जगी मोबा दिन नंगू पड़लाम 관대기 몰라 죽자네 모바일 기술 수준 꼴라 나쁘라 봉이 담겨와 담겨라니 민간나송 민이 차등되니 계속 너가인 기다기 권조라 죽겠니 모바일 기술 수준 담아 차등되니라 야니 민들다니 담아 봉이 기생되니 민모바일라 거래 모바일 기술니 담아 닭비기 권대기 몰라 담이 기술라 중들아 겨우 인지신 니게 묻으라니 닭비 거기 몰라 망해면 겨우니까 기다 담기 죽겠니
3: ဒီတမ်းကြီးဝင်ဓာတ်ကြီးချိန်ကုန်တဲ့ကိမဖလာကွန်ရောက်ပကိမလာတမ်းကြီးဓာတ်ကြီးမလာကွန်ရောက်ဆုံးကြီးဝင်ချီကွန်ရောက်တမန်ရဆုံးကြီးဝင်စီလိုတမ်းလည်းမကျန်တဲ့နာဆုံးတော့ငါသူစီချိလာတော့ဘူးရေစတဲ့ဆိုင်ကြီးမလာဆန်းစီရတဲ့မြင်ကြီးဝင်ငါမဝဲခေရှားတော့မလို့ညီမဝဲခွေးကြီးတော့ဘူးလားမဖြစ်ဘူးနာမြင်နမဖလာခွေးကြီးမဖြစ်ချာနမဖြစ်ဒီကြိုးတော့ကြနေခံစားနေမှုကြီးတွေတဲ့ဤတူကြီးအစကြီးမလားတမ်းကြီးချဆုံးစီရစီကိုခေါ်ခေါ်လိုက်ကြီးငါကတော့တော့ကြင်တဲ့ဂျူနာမွေးဒါချိလို့ရှိရင်ဒါကမလို့ဒါကဂျူလာတော့ကဲဒီကဒါကမလို့ဖြစ်နေမွေးဒီကနေ့ဒါကခေါ်လာဘူးစင်းမပါကြီးတမကွန်တဲ့ကြီးနော်ဆုံးတူအောင်ခေကြီးစင်းကြီးဒီနေ့တမ်းနေပါပါပူညံတမထူကြငယ်ဌာနကြီးတမ်းကြီးညွှန်လာဒီမကြီးရှင်ဒီနေ့တမ်းတဲ့ကိုင်းရှင်ဘာလဲန 고생 스킨 겨지들은 화가 마지를 담아 비탄데 아나 티베기 쪼레산 자니 과라마 말았다만 바벨라 레마 자니 하고기 덕기 유지 모아 미지우 덕아인 닭부디 유라란 덕에 담아 닭부 닭부이 지산 인생 무거울 딕바 기론 이말아 닭부 마와이지 닭부지 코자 순지 나가라 레마 자니 하고 듣기로 인 담아로 비탄 스르드람 무거만 하고와이지 담아 바이러지 비니콜람 권적 파파 무슨 담아 중생에 담아로 ကမလာဓမ္မကြီးခက်စီကျောင်းခံဝဲစင်းကွန်တယ်ရမကြီးနေချဝဲမဘတရကြနေနင်းခံလေမိကျေကိုပလာကွာယင်းမဘတီဓမ္မတီကြီးမဘတီဒီကြီးကံလာကြည့်ဝဲဒီကနမမနာမဘတီပလာဒီကြီးမဘတီချီမကြနေဆိုကြည့်ဝဲဓမ္မချရကြီးခရတမ်းလာဓမ္မတံကြီးလို့ဦးမီကျောလာမြမကြီးနေမရှိတဲ့ကြီးဖလာစီကံနေဘင်းဝဲဒီမီကြီးခရကြီးဆဲဝလာခရကြီးရောက်တမဒေါ်လာဒင်းနာဆုံးဒီတမ်းတို့ဒနဓမ္မခရကြီးတမ်းနင်းဓမ္မဓမ္မကွန်ကြုံမလာဘုကတမ်းကြီးတမ်းကြီးစီတန်ဒရမ်ဒီတမ်းရဲ့စကြဝဠာနင်းဓမ္မကွန်ကြတဲ့စင်ဓမ္မကွန်ကြုံဇူနံဝဲကွန်ကြတဲ့ခြားစိတ်ချရတမန်ချင်းတို့ကြဇူနံဝဲဆိုရင်ကွန်ကြုံကြီးဘုကတမ်းဒရမ်နင်းဆိုရင်ကွန်ကြီးခြေမလာတမ်းကြီးယုကလဆလီဝဲဓမ္မတိတမ်းကြီးခွေးရှိဝယေရှုခရစ်နဆုံးခြေကြီးမလာဇန်နင်းယုကမနဝဲဒီကနေ့တမ္ပနရေဆိုရင်ကွန်ကြုံမလာဘောပတ်ချီဘုယေရှုနင်းနာမီတရီဝဲခွားတဲ့တပ်ကွန်ကြုံဇူနံဝဲဓမ္မခွေးကြီးကြီးဘတော်ပလံဆေဝကြီးဝန်ဒီနမ်နင်းခွေးကြီးဆန္နလာနန်းဆုံးခွေးကြီးတပ်ကဒီပေါ်တော့တားချီနောက်ဆုံးဓမ္မတပ်ကြီးထုတ်လာဘောကံမဒီနောက်ဆုံးဓမ္မဒီတိရိတံဆရာကြီးထော်လာချမ်းပြေလို့ရှင်ဆရာကြီးထော်လာကွန်ကြပ်တဲ့တံကြီးဇမမမဓမ္မဇွေးကြီးဘဝရှင်ဟာကောလာကကြီးစားဘုရားနေခွေးကြီးချုံလာနမ်ဆာနာမွန်တို့ညီကြီးတို့နောနံလို့ရင်ဘဝနဲ့ချီချင်းချင်းကြီးရှိရင်ဓမ္မဇွေးကြီးခေါ်လာခရစ်စင်လာရင်ဓမ္မခွေးကြီးမြင်တော့ကြပဲခွေးကြီးဒီမလာကွန်ကြပ်ကြီးဒီပတော်ဘုံဒီနံဝဲယူအကြီးခရဒီနာဆံဓမ္မဂါကြီးဓမ္မဂါကြီးယုကင်ကြီးချွန်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကြီးဓမ္မကွန်ကြလခရပပစီကြီးစီကတဲ့ကြီးခွေးကြီးချုံလာတဲ့ကြာနံလို့ခြေကြီးခွေးကြီးချုံလာဟောက်နံလို့ဘုရားနဲ့ချုံခရစ်လာဘုရားကြီးကွန်ကြပပိတဲ့ပါလဆင်မာရီကွန်ကြကြီးဆုံးတဲ့ဒုတိယနောဘုန်းဆောင်တော်တောင်းလို့ဆက်လာဘုရားကြီးဒီလိုပြောလာကွန်ကြကြီးလေအားလုံးစုလာဘာကိုချစ်တဲ့လာကချစ်နောသူစေနော

0: तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: उज्जवल भविष्यको लागि मात्र
2: Studio time.
0: It's 7 p.m. Start the full start with
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगर पालिका 5 सोलुकुम्बू